बिल्कुल, मुश्किलों में डालना मकसद नहीं, मुश्किलों से बचाना मकसद है। इसी तरह मसला नहीं है कि अगर आप गाड़ी में हैं तो जाहिर है गाड़ी के ऊपर एक कवर आ जाता है, और अगर शीशा थोड़ा डार्क है तो उसमें अगर आपने बहुत अपने आप को नहीं भी बांधा, वो हल्का सा खोल दिया है तो भी उसमें हरज नहीं है। अगर हाँ ये खतरा हो, और खासतौर पर जब इशारों के पास आप जाके रुके, गाड़ी रोके, फिर आप देखें कि लोग किस तरह, लोगों का और शुगल ही कौन ही सिवाय इसके कि आपकी गाड़ी में जाएंगे और एक ऊपर से नीचे तक आपके सरापे को घूरे, तो ऐसी जगहों पर खासतौर पर फिर एहतियात की जरूरत है। इसी तरह बाजार में, और याद रखिए कि सारे मामले में कहां क्या करना है, सबसे बड़ा इंडिकेटर औरत के अपने अंदर लगा हुआ है। दूसरों की नजरों को पहचान अल्लाह ने ऐसी दी है कि इंसान उनको इग्नोर नहीं कर सकता। और याद रखिए कि ये जो कहते हैं ना चेहरे के पर्दे में इख्तलाफ है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि जहां फितना हो वहां औरत को ढांकना चाहिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। जो फर्क या रुख्सत है वो इस हद तक है कि जहां फितना ना हो वहां कुछ ना कुछ गुंजाइश मिलती है, लेकिन मेरे पास सच कोई ऐसे दलायल नहीं है कि मैं आपको कहूं कि इस बात की रुख्सत के ये और ये दलायल है। मैंने जो कुछ पढ़ा है वो सिर्फ फतवा नहीं, तकवा का तकाजा यही है कि मैक्सिमम अपने आप को इंसान बचा कर रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्रु अलर रिजाल मिनन निसा, सही बुखारी की रिवायत है, मेरे बाद तमाम फितनों से ज्यादा नुकसानदेह फितना मर्दों के लिए औरतों का फितना है। आप सब इसी माशरे के रहने वाले, आपने कभी देखा नहीं बाजार में, कई दफा गुजरते गुजरते भी गौर किया ना कि बाज औरतें महज हंस हंस के दुकानदारों से बात करती कि सौदा सस्ता कर दे। इस कदर तकलीफ होती है उस वक्त मुझे कि अपनी मुस्कुराहट बेच के, अपनी इज्जत बेच के इस चीज सस्ती ले रही, इस चीज की क्या अहमियत है कि जिसमें एक दो रुपए कम हो जाएंगे। बाज़ोकात अजीब वो गरीब किस्म के नजारे नजर आते हैं, और फिर क्या हम अपने भाइयों के लिए, अपने शौहरों के लिए चाहेंगे कि उनसे दूसरी औरतें आके इस तरह के हंसी मजाक करें? हरगिज नहीं, कोई औरत ये पसंद नहीं करती। तो फिर ऐसी होछी हरकतें, और खासतौर पर हिजाब पहनकर ऐसी हरकतें करना किस कदर तकलीफ दे चीज है। एक और हदीस है तिर्मिज़ी की, इन्नल मरअता औरतुन फइज़ा खरजत इस्तशरफ़ अश्शैतान व अक़रबु मा तकूनु बिरहमति रब्बिहा व हिया फी क़ारि बैतिहा। औरत सतर है, इन्नल मरअता औरतुन, औरत का माना पीछे पड़ा था ना, खतरे की चीज और खलल वाली, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे ताकता है, शैतान पीछे लग जाता है ताकि उसे अपना आलाकार बनाए। और अल्लाह की रहमत से करीब तर वो उस वक्त होती है जब वो अपने घर के किसी गोशे में होती है, यानी जहां वो महफूज होती है। फिर आप देखें कि वो कहते हैं ना, वो एक शख्स ने निकाह का पैगाम कहीं भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुमने उसको देखा है? उसने कहा मैंने देखा नहीं। आपने कहा जाओ उसे देखो। वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है? अगर उन्होंने कहा है तो मैं देखने दूंगी, वरना अगर वहां से रुख्सत नहीं तो मैं देखने नहीं दे सकती। ये था औरतों का ईमान। अगर वो बाजार घूम फिर रही होती तो देख लेते कहीं भी। मैं इस बात पे बहुत सोचती हूँ कि कोई भी शख्स, कोई भी औरत जब नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, जिक्र करती है, दुनिया भर के काम करती है, तो यानी लेकी के जैसे उसको कोई कुछ नहीं कहता। आखिर क्या वजह है कि अगर कोई औरत सर ढांपती है या जीनत छुपाती है तो सब हरकत में आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? यानी लोग आपका सारा दिन एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई आपको नहीं मना करेगा नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप, लेकिन जो ही आप खुद को ढांपने लगे आप खुद भी परेशान हैं और दूसरे भी परेशान हैं और सभी परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। और सारी मुखालफत इस पे है, सारा गुस्सा इस पे है, सारी परेशानी इस पे है। हालांकि अगर हम वाकई माशरे के खैरखा हैं, अगर हम माशरे की भलाई चाहते हैं, अगर हम माशरे से ये सारा इनजस्टिस खत्म करना चाहते हैं, तो हो नहीं सकता जब तक हम अल्लाह ताला के दिए हुए उसूलों को लेना और उनको सिर्फ ये कह के रद्द कर देना कि ये एक इंसान की तफसीर है और ये एक इंसान की बात है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इसका हल सिर्फ ये कि अपने अंदर इतना ईमान और करेज पैदा करें कि पहाड़ भी आपसे टकराए तो वो टूटे, आप न टूटे। जो कुरान में है बता दिया गया, आगे सबका हिसाब अल्लाह के साथ है। अगर जवाब है उसके पास देने के लिए तो जैसा चाहे करे। जितना ज्यादा दिल में अल्लाह का खौफ और ईमान आएगा उतने ही ये सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लोगों की नजरें क्या चीज हैं? लोग कौन है हमारे, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? अगर मेरे तरफ कोई

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

और आफताब का रोशन चिराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार मी बरसाया, ताकि उससे अनाज और सब्जा पैदा करें।

0: ये कैसा कानून है?
1: जी, और उनके खिलाफ मतलब खड़ा होना पड़ेगा, और यही तो बार बार बताना पड़ेगा कि नफरत फैलाने वाले जो उनसे हैं, इनसे ही बचना चाहिए, क्योंकि ये बस अपनी पावर के लिए फैला रहे हैं। और इनमें बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उठा उठा आगे देखें, अब ये फनीले वहम उनका दोबारा उठा लेंगे। मतलब कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं, इन्हें भी पता है नफरत फैलाना बड़ा गलत काम है, मगर बस उसी पे ही हाइप मिलता है। नफरत पे बात हो रही, मेरी बेटी आई गाय कहती है, बाबा इसके लिए पोशेक्स एन बयान स्क्री। मैं कहा पुत्र, आप ना अपना एम रख के, अपने जो इमने है ना रख के देखना कि हिटलर पावर में कैसे आया था। वो उसके साथ आजकल मेरी बड़ी मजे की डिस्कशन होती है, कहती है बाबा वो तो मतलब दीवाने थे लोग उसके, और उसकी स्पीचेस और वो जो बातें, मैं कहा उसके स्टेट्स मतलब उसके जो कोर्ट्स है ना वो लेके आप देखना, कि ऐसे हेट करते करते, और मतलब कि जी मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर करूंगा। मैंने कहा ये एक मतलब हेट स्पीच और जोन सी होती है, ये इस तरह के लीडरान बहुत आ गए हैं दुनिया में, और इनसे हमें बचना चाहिए, और इनका मतलब बढ़ चढ़ के हमें जो उनसे नहीं मुकाबला करना है। तो
0: क्योंकि
1: इसलिए
0: बच्चों को इस उम्र में हीरो अच्छे लगते हैं, विलेन अच्छे लगते
1: जी,
0: हैं।
1: बिल्कुल, वो उनकी समझ आसानी में आती है ना। आप देखे ना हमारी वो हम दी ये क्या, आप अपनी बॉलीवुड लॉलीवुड फिल्में देख के बड़े हुए हैं, वही बंदा कहता विलन पूरी फिल्म में यार अच्छी भली जिंदगी गुजार गया, हीरो मतलब पूरा एंड में बस वो सारी जिंदगी मुश्किलों में काट काट के, हीरो जो उनसा होता है ना एंड में जीतना होता है, 2 घंटे की फिल्म में विलन ने तो मौज ही किए तो वो दिखाना पड़ता है कि जाहिर है कि जिंदगी अच्छे अखलाक, जी हमारा दीन भी अखलाक सिखाता है, अच्छे अखलाक के साथ अपना दीन और दुनिया दोनों इसी से सबर नहीं है। क्योंकि दुनिया में तो अच्छे ठीक है, 2 घंटे आप अच्छे रह लेंगे, एंड अच्छा नहीं होगा ना फिर, तो अखलाक में इंशाल्लाह।
0: ठीक,
1: तो
0: बेहतर है।
1: पॉलिटिक्स
0: जीशान,
1: आना
0: आपका बहुत
1: बड़ा
0: शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया, और मुझे पता है
1: शुक्रिया
0: आपने
1: आपका
0: जाना होता
1: राजा
0: है, मीटिंग्स होती हैं, ये छुट्टी का दिन होता है, तो काम
1: साहब। नहीं,
0: करने
1: आज तो
0: वाले के
1: बचे
0: लिए तो एक एक मिनट जो है उसका कीमती होता है। तो
1: बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं आजकल वही आपको बोला ना, अभी बस मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब ये आज संडे आधा निकल जाएगा पढ़ाते पढ़ाते का, जरा बस देखना है कि बच्चों की तैयारी कैसी है सुबह के लिए, जो मेरे अपने ट्यूशन वाले बच्चे हैं, तो आज इसमें निकल जाएगा। वही बोला पॉलिटिक्स, इंशाल्लाह ये एग्जाम्स हो गए तो इसके बाद मैं एक दफा फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा दोबारा, ऑनलाइन भी और सारा। तो आपको जी दोबारा जर्नलिस्ट डे मुबारक हो राजा साहब, आज का प्रोग्राम तो फिर आपके नाम
0: थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका
0: सामान्य नाज़रीन, ये थे ज़ीशान जो के बात कर रहे थे। सामान्य गपशप की शक्ल में हम बात करते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए, कहने वाला खुलकर बात आप कर लें। तो जब आप बहुत सारी पुचीदा किस्म की बातें सवाल करना शुरू करते हैं तो फिर जवाब सोच समझ के देना पड़ता है, तो इसलिए जब आप गपशप की शक्ल में बात करते हैं तो सारी बातें जो है वो आसानी से वो करते हैं, फिर समझाने में भी उनको जो है कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, सवाल करने में भी फिर दिक्कत महसूस नहीं होती। तो समय नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए, अगर किसी ने कोई बात करनी है, अपना नुक्ता नजर पेश करना है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामान नाज़रीन, इस हफ्ते में बहुत सारी बातें हुई, बातों से मुराद है बहुत सारी खबरों वाली बातें हैं। 1 मई था, आज 3 मई है, सहावत का दिन है, और उसके अलावा मौसम गर्म हो रहा है, दिन ब दिन गर्म हो रहा है, और सियासत जो है वो दरमियानी दर्जे पे जा रही है, और हुकूमत भी जो है वो बनने जा रही है। तो सारी चीज़ों को मलूज़ खातर रखते हुए हम तजिया लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं अदनान अमीन अली, इनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है, अब जो क्या होने जा रहा है। अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम साहब, आप कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
1: अल्लाह का शुक्र। अदनान, सबसे पहले तो 1 मई गुजरा और ये मजदूरों का दिन होता है और बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है और बड़ी रौनक होती है। इस दफा तो जरूरत से ज्यादा रौनक थी, पिछले सालों की नस्बत बहुत ज्यादा रौनक थी, और सियासतदान भी आए हुए थे और अपने अपने जो है वो टेंट्स में खिताब भी उन्होंने किया, लोगों ने भी बातें की और स्टॉल खाने पीने के लगे हुए थे, झंडे भी हमें नजर आ रहे थे। आप किस तरह देखते हैं इन चीजों को?
2: साहब, ये तो एक वर्किंग डे है, काफी सालों से है और एक ट्रेडिशन है और ये हर साल होता है, और इस साल तो ये स्पेशल भी था क्योंकि इस पे ना एक, जैसे आपको मालूम होगा कि पिछले साल पिछली गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने हाउस का ऑफर कर दिया था, तो वो क्या कहते हैं हम, वो भी इस साल क्लिक कर रहा था, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो है ना अभी तक, वो फिर उस दिन को भी अभी तक बनाती हैं और उस पे भी इस साल काफी क्या कहते हैं डिबेट है, क्योंकि 1 मई तो एक ट्रेडिशन बना था ना 1890 में, और आप देख रहे हैं उसको, मतलब कह दें आप लोग 136 साल हो गए हैं उस ट्रेडिशन को चलते आते हुए, और इस साल वो इसलिए भी जरूरी था कि जैसे आपको मालूम है कि एक तो ये कि स्तोपिलता भी उसी दिन गामा किया था जिसको इसने हाउस काफ किया था, और दूसरा ये था कि इस साल 1 मई तक कोई गवर्नमेंट नहीं थी बनी हुई और वो एक्टिंग गवर्नमेंट थी, तो फिर क्या कहते हैं दिन तो स्पेशल था क्योंकि ये था कि उसके अंदर जैसे आपको पता है इलेक्शन के अंदर बहुत सारे डिबेट चार्जेस थे काफी चीजों के, और वन ऑफ द डिबेट यही चल रहा था पेंशन के बारे में, फंक्शन के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहते हैं ये था कि इस इलेक्शन पे लोग क्या पार्टियां कोई स्टेटमेंट देती हैं कि नहीं देती, तो वो यही है कि उन्होंने भी स्टेटमेंट नहीं दिए क्योंकि उसके अंदर ये था कि राजा साहब के जो लास्ट लुक है ना उसको थोड़ा क्या मेरे दिमाग में से उसको इस बात की समझ नहीं है कि बंदा पेंशन जो होती है ना उस चीज को डिफरेंट वे से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जिस तरह हॉर्नबैक है वो जल्दी उम्र में आपस मार्केट में आ जाते हैं और जो दूसरे होते हैं वो लेट आते हैं, तो सब बंदा एक सेम तरह की पेंशन का रिफॉर्म बंदा नहीं बना सकता, तो ये डिबेट तो एक चल रही है और फर्स्ट में ही अच्छा गुजर गया सबका, और अच्छी बात है कि अच्छा गुजर गया और मौसम भी अच्छा था, गर्म थी तो बंदा क्या कह सकता है।
1: दूसरा, अदनान, हुकूमत तो बनने जा रही है, अब क्या क्या हुआ, क्या क्या इनके आपस में वादे हुए, किस तरह एक दूसरे को सियासी पपियां दी और बैठ गए और इन्हीं सिलेशन को खामोशी से एक तरफ कर दिया?
2: नहीं, देखें इन सिलेशन को एक तरफ नहीं किया, डेफिनेटली इस गवर्नमेंट का पार्ट बनेगी और वो इस गवर्नमेंट का क्या कहते हैं अलायंस में होंगी, बस वो गवर्नमेंट में नहीं होंगी, वो इनका क्या कहते हैं पार्टनर होंगी और वही आखिरी मंडेट देंगे। हाँ, ये बात सही है कि गवर्नमेंट काफी क्लोज आ गई है और हो सकता है कि कमिंग डेज में गवर्नमेंट बन भी जाए, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ही जिस दिन 1 मई था उस दिन काफी लंबी लास्ट लुक की और मेरे फर्स्ट की बैठक हुई है, मेरे ख्याल से करीबन 7 घंटे की उनकी बैठक हुई है, और अब सर ये कि गवर्नमेंट एक तरफ जा रही है तो उसके अंदर दो नतीजे भी हैं कि हमें ये लग रहा है कि ब्रेंच का पिछों में जाएगा कंजर्वेटिव के साथ, क्योंकि वो एक ही एजेंडा पे लगे हुए हैं, इकोनॉमिक कंसवाल ही हो, मगर पिछले 4-5 सालों से पांच दब 19 से ये बैठे हुए हैं तो इन्हें तो एक चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं یہ انگلش لیسن کے ساتھ ہی مل کے گورنمنٹ بنائیں گے, اور اس میں کیا کہتے ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے گا وہ پارٹی ہوگی سوشل ڈیموکریٹ, ایس ایف اور غریکیل ونستا امور غارا, یہ آپس میں نا مسٹیاں ڈیفرنٹ بنائیں گے جو صورتحال جا رہی ہے. اور فالکی تھنگس فورمین کون بنے گا یہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنتا ہے. فالکی تھنگس فورمین مجھے لگتا ہے سوشل تم کچھ اپنے پاس ہی رکھے گی اس بار.
1: اگر وینسٹا ساتھ نہیں بیٹھتی تو پھر حکومت بن جائے گی؟
2: جی جی بن جائے گی, کیونکہ ان کے پاس سیٹیں ہیں نا, مرغات ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر حکومت بن جائے گی, پھر 90 سے اوپر سیٹیں ہیں ان کے پاس,
1: 90 کے حساب سے سیٹیں ہیں. تو ونسٹا پہلے تو تھا کہ ونسٹا کے ساتھ مل کر بنا رہے ہیں؟
2: نہیں وہ وہ وہ جو وہ نہیں, کیونکہ وہ کچھ ڈیمانڈیں آتی ہیں کہ جو بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے لیے, اس میں یہ بھی تو ہے نا راجا صاحب, آپ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ڈینمارک میں نا پچھلے کپل آف ایئرس کافی عرصے سے منچر چرچ کی انگ بنی ہے, جن کے 90 منتائی رانی ہوئے, پھر انہیں جوڑ کر کے نا کیا کہتے ہیں قانون پاس کرائے ہیں. کیونکہ آپ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سوشل ڈیموکریٹ 2019 میں جیتے تھے نا تو انہوں نے 25 روپئے کی انگ بنائی تھی, اور وہ پھر ڈپینڈ تھے دوسری پارٹیوں پہ, تو اس لیے 90 سیٹوں کی ضرورت نہیں, مگر اچھا ہوتا ہے کہ 90 سیٹیں کی ضرورت ہوتی ہے. پچھلی بار بھی ٹیکنیکلی 90 نہیں تھے ٹپے, یہ 89 سیٹیں تھیں ان کے پاس, تو پھر میں نے تامی کمر بنا لی تھی 89 اور 86 تھی نا دوسری طرف جو پارٹیاں تھیں, تو سر وہ بن سکتی ہے. مین بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حکومت بنے اس کے اندر جو ہم غیر ملکی ہیں وہ بھی اپنی آواز رکھیں اور آواز اٹھائیں اور اپنی چیزیں جو ہیں نا اس کو کریں.
1: عدنان یہ جو موجودہ ممکنہ پارٹیاں ہیں, سوشل ڈیموکریٹ ہوگی, سوشلسٹ پیپلز پارٹی ہوگی, ریڈ گرین الائنس ہو گیا, سوشل لیبرل ہو گئے اور الٹرنیٹو والے ہو گئے, تو کیا یہ ملیں گے آپ اس میں حکومت بنائیں گے؟
2: جی جی یہ جو حکومت اس وقت بن رہی ہے

0: जी,
1: तो ये क्रास हुकूमत क्या होती है?
0: क्रास हुकूमत ये तो होता है ना जी, ये क्रास हुकूमत तो कम ही होती है, ज्यादा ये होता है कि जो हुकूमत होती है राजा साहब वो यही होती है, जो फ्लेयर चाइल्ड की बन जाए वो बेहतर होता है। मगर इस बार भी आपकी ये जो हुकूमत बनेगी ये मेरी नजरों में बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे आगे चलेंगे और कैसे चीजों को लेके चलेंगे, ये तो उस वक्त ही पता चलेगा ना जब प्रकेंग स्मॉल बनेगा, उसके अंदर क्या लिखते हैं और किस चीज पे काम करते हैं। क्योंकि डिबेट के अंदर सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट था वो था फंक्शन ट्राइगेवन और कुछ और चीजें थी, तो आप देखते हैं कि रैकिंग स्कॉलर में ये क्या क्या चीजें लिखते हैं। जितनी देर तक वो नहीं आएगा हमारे हाथ, हमें पता तो नहीं ना चलेगा कि क्या किस चीजों पे ये काम करेंगे। और दूसरा बात तो ये भी है ना राजा साहब, आपको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि अभी तो हमें ये भी नहीं ना पता कि इंटरनेशनल सूट तैयार क्या बनती है, क्योंकि ईरान और यूएसए का मसला हल तो नहीं ना हो रहा, उसके अंदर ये भी तो हुआ है ना कि ट्रंप ने अपना जो कहते हैं कल जो गुस्सा निकाला है कि 5,000 ट्रूप वो जर्मनी से बाहर निकालने लगा है, तो मतलब चलता है कि ये ट्रंप कोई ना कोई पंगा यूरोप के साथ भी डालेगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है दुनिया की।
1: नहीं, अभी तक ट्रंप जो है वो बैलेंस नहीं हुए, किसी जगह पर ठहरे नहीं।
0: नहीं ठहरे नहीं है उसमें राजा साहब, उसमें ये मसला है कि अमेरिका के अंदर भी कुछ कानून होते हैं और उसमें भी ये होता है कि प्रेसिडेंट ने उन कानूनों के अंदर रहना होता है। एक कानून ये होता है कि प्रेसिडेंट कुछ ये जिस तरह उसने ये जंग शुरू की हुई है उसके बाद उसने उस जंग में से विदड्रॉ भी होना होता है और उसका डिबेट होना होता है कांग्रेस में। अब कांग्रेस वाले ये कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में कि वो डिबेट ना हो, क्योंकि वो खतरनाक ये सोच रहे हैं कि हमें कि ये ना हो कि नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा मारना पड़ जाए। और ये जो मर्जी कर दे मार तो इनको पड़नी पड़नी है, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल है जिस तरह से लोग अनसेटिस्फाइड हैं और जो पिछले हफ्ते इंसिडेंट हुआ था वो एक होटल के अंदर उस पर भी बड़े सस्पेक्ट उठा रहे हैं कि इसने खुद तो नहीं ना किया सिंपैथी के लिए, तो अब देखते हैं कि वो सूरत हाल क्या बनती है। क्योंकि ट्रंप तो मेरे ख्याल से तो वो दुनिया के लिए इतना अच्छी सूरत हाल नहीं है, मगर वो सारी चीजें पैसपट और देख के तो ये इनने आगे जाना होता है और गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं अपने अपने कानून और चीजों को देखना होता है। मगर हर पैसपट मैं ये कहूंगा कि लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है ना वो डेनमार्क के अंदर कुछ ना कुछ बातें बाहर आने लग पड़ेंगी कि किस चीज पे ये एग्री हो रहे हैं और कौन कौन से चीजें इनने अगले 4 साल की जो 4 साल का पीरियड बनाते हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल आज भी निगोशिएशन थी जहां तक मेरा हमें मालूम है।
1: लेकिन अदनान, अगर यहाँ की हम बात करें, डेनमार्क की जो है, अपने मुल्क की बात करें, तो अगर इमिग्रेशन की पॉलिसी को देखा जाए तो ये तो इसमें तो कोई मुआवजा नहीं है, ये तो हम सख्त पॉलिसी जारी रखेंगे। इसी तरह जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स आते हैं उनको भी महदूद करेंगे, पनाह गजीनों के कानून को भी सख्त करेंगे। तो मतलब है कि गैर मुल्कियों को या जो है अपना उनको क्या मिलने जा रहा है, जो यहाँ रहते हैं या टैक्स देते हैं, इस मुल्क का हिस्सा है, वोट डालते हैं, वोट का उनको हक मिला है, कम्यूनों में बैठते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ते हैं और पार्लियामेंट में जाते भी हैं गैर मुल्की, तो उसके बावजूद इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त, तो कोई चीज़ हमें तो नजर नहीं आ रही। आपके जहर में कोई है जो हो रही है? पस पर्दा भी बहुत कुछ चल रहा होता है ना।
0: राजा साहब मैं एक बात कहूंगा, जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 हफ्ते से कहा था, एक बात मैं कहूंगा और मैं सबूत भी दे सकता हूँ। मेरा इस हफ्ते पूरा हफ्ता के काफी क्लैश रहा है कुछ टेंस वॉल के पक्षी के बंदों के साथ, फेसबुक पर भी वैसे भी रहा है, क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि हेलसिंग में 2004 में उनको इजाजत मिल गई थी अपनी मस्जिद बनाने की उधर, और वो एक लुखेर प्लान होता है और उसको देखिए आप 1 मंथ के लिए उनने उस लुखेर प्लान को कैंसिल कर दिया है कि वो अपनी मस्जिद बड़ी नहीं बना सकते, इवन कि उनको 2004 में इजाजत मिल गई थी। और आप मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जिस वजह से उन्होंने ना की है और जिस वजह से उन्होंने मीटिंग भी नहीं की, जब वो चीज उन्होंने सोल्यूशन कर दी हुई है तो फिर बंदा देखता है कि एक अलार्म है हमारे लिए, फॉरनों के लिए भी मुसलमानों के लिए भी, कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। आप देखिए कि जो कानून उन्होंने उस चीज में इस्तेमाल किया बंद करने के लिए

0: में कुछ लीगली एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है वो यही है कि वो आप कोर्ट में वो कंप्लेन करेंगे और जीत भी सकते हैं, और मुझे लगता है वो जीत भी जाएंगे, क्योंकि जिस आर्गूमेंट से उनको ना हुई थी वो ये था कि पार्किंग के इशू थे, उसके लिए उन्हें दो जुम्मे करार दिए, मसले कोई नहीं है इतने, तो उससे अलार्म है। हाँ, फॉरेन पॉलिसी में आप कहें कि कानून काफी सख्त बन चुके हुए हैं और कुछ और सख्त कानून आएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कुछ देर पहले, वो खाली पाकिस्तानियों के लिए, तुर्कियों के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। वो ये है कि ये जो मुल्क से बाहर जाते हैं और इंफॉर्मेशन नहीं दे के जा रहे, उस चीज़ को ये थोड़ा और सख्त करने लगे हैं। उसके कोई कानून टेबल पे थे, टेबल पे आएंगे, उस चीज़ों को करेंगे। दूसरा, ये कानून ये सख्त करने लगे हैं कि जैसे आपको एक वाकया होगा कि कानून काफ़ी सख्त हो गए हुए हैं, क्योंकि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद आपने भी सुना हो, लोगों को भी पता हो, टॉस्टॉप में CT2 में एक वाकया हुआ था जेएनवी मान, जहाँ कुछ लड़के के लड़ाई झगड़े हुए थे और वहाँ एक 16 साल का लड़का पकड़ा गया हुआ था। अब मैं आपको बताऊँ, वो 16 साल लड़के को कल सजा नहीं हुई, उसको उल्विसनिक्स्टॉम भी साथ हो गई है कि वो 6 साल मुल्क की तरफ आ भी नहीं सकता जब उसकी सजा मिल जाएगी। तो आप देखिए, पहली सख्त कानून है और उसके अंदर और कानून बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए ना कि फिर कितनी मुसीबतें पड़ेंगी हमें।
1: अदनान, हर चीज में सख्तियां हो रही है, जिस तरह भी आपने इशारा किया सजा की तरफ आपने बताया, तो ये अपना नेटो के मुताबिक भी चलेंगे, अखराजात करेंगे, तो फिर ये कौमी बचत में इजाफा किस तरह करेंगे, किस तरह ये बचत करेंगे?
0: ज़ाहिर साहब, यही तो डिबेट चली है कि यही तो सबसे बड़ा क्या कहते हैं मसला रहा है नेगोशिएशन का, क्योंकि यही तो क्या कहते हैं डिस्कशन चल रही है कि इकोनॉमी को कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि लास्ट लोगे का तो आइडिया ये था ना कि हम सबकी पेंशन बड़ी कर देते हैं, और उसने तो सर ये भी कह दिया था कि 79 उम्र तक बंदा काम कर सकता है, पता नहीं सर उसने खुद प्रैक्टिकल काम नहीं किया हुआ तो उसको ये इतना नहीं पता कि प्रैक्टिकल काम करना तो बंदे की कमर और कंधे और टांगे और सब कुछ क्या कहते हैं कैसे हो जाते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा क्या कहते हैं इस वक्त बहस चल रही है कि इकोनॉमी कहाँ से लाई जाए, और यही चीजें क्या कहते हैं दो है ना चलती जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बात बता दूं कि हमारी मैं एक एग्जांपल दे, जिस कमून में हम रहते हैं हमारे एक्सपेंशन ज्यादा हैं मगर पैसे जो हैं वो उतने नहीं हैं, तो फिर हमें पुलिया लेने पड़ते हैं। तो ऐसे ही देखिए ना कि पूरे मुल्क का ये हाल है, और अब देखते हैं कि इकोनॉमी को कैसे लेके चलना कैसे नहीं, क्योंकि इकोनॉमी है तो प्रेशर में, और देखते हैं कि क्या चीजें निकलती हैं, और यही मैं भी काफी देख रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्या करेंगे और कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि जैसे आपने भी कहा है कि काफी चीजें नेटो का भी बजट है, बजट भी है और चीजें भी हैं, तो देखते हैं कि क्या करते हैं और कैसे ये लेके चलते हैं आगे।
1: चलें, ये तो वक्त बताएगा, हुकूमत बनेगी तो डेफिनेट मुआहदे तो ये कर लेते हैं, मुआहदे तो बाद में बाहर आते हैं, दूसरा इलेक्शन करीब आता है तो फिर बताते हैं कि हमने हमारे साथ ये वादा हुआ था और ये वादा वफा नहीं हुआ, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हम कम्यूनों की तरफ आते हैं, तो कम्यूनों में क्या हो रहा है, कोपेनहेगन में क्या चल रहा है?
0: दरअसल कम्यूनों में तो यही चल रहा है ना कि जो उनकी अपनी पॉलिसीज होंगी वो बना रहे होंगे और चीज़ों को देख रहे होंगे कि कैसे मॉनिटर करना है, क्योंकि इन दिनों के अंदर ये मई जून जुलाई के अंदर जो होता है ना कम्यून का पिछे जो देना होता है उसकी भी नेगोशिएशन शुरू होने वाली होती है, और इस वक्त तो देखा जाए तो केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है, और देखते हैं कि उसके बारे में क्या बनता है। कोपेनहेगन कम्यून में अपनी पॉलिसी चल रही है, थोड़ी बहुत क्या कहते हैं मेरे इलम में यही है कि थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस आई हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि 110 सालों के बाद एक SF का पोमेस्ता बैठा हुआ है, और ऑब्वियसली उसकी पॉलिसी अपनी होगी और अपनी सोच होगी और वो अपनी सोच से चल रही होगी। इस वक्त तो वो भी क्या कहते हैं ना थोड़ा बहुत ये भी तो देख रही होगी ना कि मेरी पार्टी नेशनल प्लान पर कैसे जा रही है, कि वो गवर्नमेंट में आती है कि नहीं आती है और क्या चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो मैं कहूँगा कोपेनहेगन कम्यून को देखनी पड़ेगी, जो मैंने भी पढ़ा लोगों का है और लोगों के जो दो दोस्त कहते हैं और जो हैं कि इनने अपनी छफीक कुर्सी बड़ी चीज बना दी हुई है, पार्किंग को बड़ा चेंज कर दिया है, کم پارکنگ کر دی ہوئی ہے، زیادہ خرچے کر دیے ہوئے ہیں، اس بات پہ میں بڑا سن رہا ہوں اور میں نے خود بھی جا کے دیکھا تو اس کا ایک ہے مسئلہ. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا حال ہے. اور کوئی ڈیلیگیشن اسکاٹ لینڈ بھی گئی تھی کچھ اسکولوں کے حوالے سے چیزیں دیکھنے، تو کافی چیزیں چل رہی ہیں کوپن ہیگن میں بھی اور ارد گرد بھی چل رہی ہیں، حکیم اس میں بھی چل رہی ہیں. کیونکہ جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ شیلن پورا، وہ بھی ایک پورا شیلن ڈینمارک بن جانا ہے، تو وہ بھی کام چل رہا ہے کیونکہ وہ 27 جنوری 2027 تک وہ بھی ہونا ہے، اس ملٹا سامنے ہونا ہے. تو ساری چیزیں چاہ رہی ہیں ساتھ ساتھ، بس سب کے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے.
1: چلیں یہ تو چلتے رہنے چاہیے، یہاں تو سسٹم چلتا ہے. لیکن جو ہمارے اپنے پاکستانی نساز یا غیر ملکی دوسری کوئی نیشنلٹی کے جو لوگ ہیں، ڈینش بیک گراؤنڈ، اپنی اپنی ملکوں کی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ڈینش سارے ڈینش نیشنل ہیں، اور ہمارے بھی دو ویسے میئرز ہیں اور اس کے علاوہ ریجن کے ممبر بھی ہیں، سٹی کونسلر بھی ہیں، تو ان کے کام کاج کیسے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کی نظر میں ہو تاکہ ہمارے سامعین ناظرین کو انفارمیشن ملے.
0: سب دیکھیں، میں ان کے سچ پوچھوں تو میں ان کے کام اتنے فالو نہیں کیے دونوں کے، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس انسان نے کام کرنا ہے وہ اپنی کام کرے اور اپنے رزلٹ بتائے. دونوں لگے ہوئے ہیں، پان گلانی بھی لگا ہوا ہے، خلاق بھی لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اپنی میں کرے. خلاق نے تو ایک میٹنگ بھی کیا کہتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنی پڑی کیونکہ ہمارا میئر جو ہے وہ بیمار تھا، اللہ کا شکر ہے وہ اتنا سیریس ٹھیک تھا تو واپس آ گیا وہ. اور عرفان گلانی تو دو جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی دونوں جگہ کیا کہتے ہیں ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے. اور باقی بھی جتنے کیا کہتے ہیں جیسے ندیم فروق ہو گیا ٹاسٹو میں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، وکاس بھائی گلوسٹو کمنگ میں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور مظفر وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو نئی کہنی جائے گا ان کو تو تھوڑا بہت ضرورت بھی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں چیزیں سیکھنے کی. اور زیادہ تر ہمارے کینڈیڈیٹ اس چیزوں میں بزی ہوں گے کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ فاویل کنگ نے بہت جگہ اپنے کیا کہتے ہیں پچھلے کا بار بھیج دی ہوئے ہیں کہ لوگ اپنے آئی ڈی اے بھیجیں کہ کیا کیسے بجٹ بن سکتا ہے 2027 کا. تو سو سارے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی لگے ہوئے ہیں کاموں میں کیونکہ ہم بھی ایک حصے میں تھے اور شامل ہیں، تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ سب کو پاک دے. اور ہم سب کو
1: سارے کام لگے ہوئے ہیں یا اپنی پوسٹیں انجوائے کر رہے ہیں؟
0: میں ہوپ کروں گا کہ اپنے کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ سب جس طرح صورت حال ہے اور جس طرح یہ چیزیں بن رہی ہیں ملک کی، تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری لینے کا کیا کہتے ہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری اپنی جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی ہوتی ہے، ہر چیز کو کیا کہتے ہیں غور سے دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی واک اوور نہیں ہوتا. کیونکہ صورت حال جو ہے، جب میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سال پہلے جب ہم الیکشن میں گئے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ تو ہم کو کسی کو نہیں تھا پتا کہ یہ صورتحال ہوگی جو آج ہے، تو اب سر ہی دیکھیں آپ صورتحال بدلتی رہتی ہے. اور میں آپ کو یہی موٹی اگزامپل دوں گا کہ پچھلی بار اب نیشنل پلان ہو رہا ہے، لوکل پلان نیشنل پلان دیکھیں، تو آپ دیکھیں آج 3 مئی ہو گیا، 3 مئی دیکھیں اور دیکھیں 24 مارچ کو الیکشن ہوئے تھے نیشنل پلان پہ. میں آپ کو ایک بار کہہ رہا ہوں، مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں 30, 36, 39 دن، مطلب کہ پچھلا ریکارڈ بھی ٹوٹنے والا ہے اور وہ ٹوٹ جائے گا مجھے پتا ہے، کیونکہ وہاں تک نہیں ہم پہنچے ہوئے. تو اپنی پوسٹیں جوائن کریں نہ کریں، اللہ کرے کہ اپنے کام کر رہے ہوں. پان گلانی کی میں فیس بک پہ دیکھتا ہوں چیزیں لگاتا ہے وہ، اور میری ملاقات تو کسی سے ہوئی نہیں کیونکہ میں اپنی مصروفیت میں رہا ہوں، اور کیونکہ میرے کچھ اپنے اور پوزیٹیول سے پہنچتا ہیں اور وہ میں اس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ جس چیز کا مجھے شوق ہے بہت زیادہ، اس کے اندر کافی کام ہے اور اس کے اندر کافی چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے میری کیا کہتے ہیں کافی مصروفیت رہی ہے ریسنٹلی پچھلے دنوں میں اور ابھی بھی ہے. آبویسلی کیونکہ تو الیکشن بھی آ رہا ہے، تو اس میں تو میں نے اتنا نہیں کہہ سکتا، میں بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اپنا کام کنٹینیو رکھیں، اپنی ذمہ داری کو لے کے چلیں. کیونکہ میں ایک چیز کہوں گا کہ جو نیکسٹ جنریشن آئے گی نا، وہ ہمارا جرا مرضی کینڈیڈیٹ ہو وہ ہمارا کام ضرور دیکھے، हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे। क्योंकि मैं आपको एक बात कह दूं कि जब मैंने ट्रांसफॉर्म के पच्ची को के चार पांच बंदों को लिखा है ये हेड सिंह के बारे में, तो मुझे बड़े लोगों का आया कि तुमने क्यों लिखा है। और दूसरी बात, मैंने ये भी गौर से देखा है कि कुछ लोग आपके प्लेटफॉर्म से, मैं ये कह दूँ तो मैंने ये भी बड़े लोगों से सुना है कि मैं सर जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से शिफ्ट हो गए, अभी तक मेरे ख्याल से मुझे पता चला है मैं चार पांच जगह शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपने काम पे फोकस रखें। और
1: तो ये अफवाहें उकता फैलाते क्यों हैं आपके बारे में?
0: ब्रदर साहब, मुझे इस बात का कोई दुख भी नहीं है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने कल फेसबुक पर लिखा है बस कि मैं यहाँ ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। और मैंने कुछ लोगों को ये बात की भी है, तो मुझे कल से कल रात के 2-2:30 बजे तक मैसेज आते रहे। मैंने फिर मैं टेलीफोन ही बंद कर, और मैंने फिर आज सुबह मैंने को मुझे मैं उसकी मेरे साथ 8 सालों के बाद उसने मुझे फोन किया, वो दूसरे शहर चला गया, इंग्लैंड होता है वहाँ पर जानने वाले, अब शेला में वापस आ जाए, कहता है भाई अरबी है, कहता है भाई ये क्या हुआ। मैंने कहा देख भाई, मैंने तो पिछले साल 100% ना दिया हो, मगर मैंने अभी फैसला भी कोई नहीं किया, तो अभी देख। तो कहता है एक चीज याद रख जो आपने कहा, कहता है जिसको पता हो ना कि उसने कुछ करना है, वो शहर ही बदलता रहता है। तो तुम बस अपने काम पे फोकस रखो, अपनी जिंदगी पे फोकस रखो, जिसने ख्वाह फलानी है उसने फलानी है। और मुझे अभी तक, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं 5 महीनों में शिफ्ट हो चुका हूँ, अगला लास्ट 5-6 महीनों में, तो मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ ये चीज, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि मैंने शहर बदल दिया, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ।
1: अदनान, बहुत सारी चीजें होती हैं जो नजर आती हैं लेकिन प्रैक्टिकल वो चीजें होती नहीं, बातें भी इसी तरह ही होती हैं। आप देखें ना कि अगर आप लोकल चीज़ों को देखें, मीडिया को देखें, तो बहुत सारी नई नई गाड़ियां आ रही हैं, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, और ये इस तरह आ रही हैं जैसे फैक्ट्री से रोज़ जो है वो माल तैयार हो रहा है, और इतना ही वाफर मकदार में जो आ रहा है और बिकने के लिए हर जगह जगह गाड़ियां लगी हुई हैं। एक तरफ तो गाड़ियों को कम करने की कोशिश की जा रही है, इन्वायरमेंट को साफ करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो एक धड़ाधड़ आ रही हैं, तो 10 साल के बाद इनकी बैटरियां भी हैं, बहुत सारे और भी निज़ाम हैं, तो ट्रैफिक का भी, पार्किंग भी मिलने के लिए जो है वो जगह आपको मिल नहीं रही, तो क्या करना जा रहे हैं? क्या ये सरमायेदारी की तरफ हर चीज़ जा रही है कि सरमायेदारों का जो है बिजनेसमैनों का काम चले? तो टैक्स तो हम भी देते हैं, आप भी देते हैं
0: सर, ये मसले जो है ना इसकी काफी हल करने की जरूरत होती है। और मैंने जैसे भी आपको यही कहा कि पार्किंग के बड़े इश्यूज हैं और काफी जगह पे हैं, और इन चीजों को बंदे को गौर करने की जरूरत है और इन पे काम करने की जरूरत है। और जैसे आपने भी कहा कि गाड़ियां भी बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। अब देखें एकदम से, जैसे ये जब ये क्राइस शुरू हुआ ईरान का, बड़े सारे लोगों ने हम लोग बातें कर रहे, कहते हैं हम बिजली की गाड़ी की तरफ करोगे। मैंने कहा एक मिनट बात सुने, आप वही करने लगे हैं जो पहले आप लोगों ने किया, कि आप शॉर्ट वेव में सोच रहे हैं, आप लॉन्ग वेव में नहीं सोच रहे। अब मैं आपको यही एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पार्किंग का इशू, जब से ये लेट पेने बनी है, कुछ एरियाज में ना लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं और फिर पार्किंग इशू बन जाते हैं। मैंने उसे आदमी को यही कहा, मैंने कहा कि हम शॉर्ट वे सॉल्यूशन काटते हैं, हमें लॉन्ग वे सॉल्यूशन निकालने हैं। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इस बार इसीलिए टाइम लग रहा है गवर्नमेंट को बनते हुए, कि काफी इशू है, काफी क्या कहते हैं चीजें हैं, और उतना पैसा नहीं है, किसी कमून के पास बहुत कम कमूने होंगी कि जो क्या कहते हैं सक्सेसफुल चलती होंगी। मैंने मुझे पूरा 100% पता नहीं है, मगर मैं कल बैठा हुआ था तो पढ़ रहा था हाइटॉस को कमून हमारे साथ, जो एग्जांपल मैं देता हूँ, वहां पे भी बहुत सारे इश्यूज ने चीजें कर ली हैं, मगर आपकी वही बात कि आप वो उन्होंने स्कूल में चले गए और वो सही सोल्यूशन नहीं हो सके। तो ये जिस तरह होता है ना कि हर पार्किंग के भी सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि लोगों को ये सोचना चाहिए कि पार्किंग के सोल्यूशन तो होने हैं, क्योंकि जैसे राजा साहब आपको पता होगा 20 साल पहले होंगी 4 गाड़ियां, अब 8 गाड़ियां, जब 8 गाड़ियां हो गई तो आपने उसके लिए सोल्यूशन तो निकालना है ना कि गाड़ियां कहाँ खड़ी करनी। अब आप ये तो ना कह सकते कि अब तो ऑलमोस्ट हर आदमी के पास 1 या 2 गाड़ी है, और ये तो 10-15 साल पहले ऐसे नहीं था सीन, 15 साल 20 साल पहले। तो आपको ये हल निकालना पड़ेगा ना कोई कि कैसे इसको, क्या कहते हैं,
1: अदान
0: कैसे
1: लेकिन
0: इसका हल
1: लोगों को
0: करें।
1: रागब करें ना, पुरानी गाड़ियों की कीमत दें, नई गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक उनको सस्ता करें, छोटी वो गाड़ियां हों ताकि लोग आसानी से ले सकें, शहर में पार्क कर सकें। अगर आप गाड़ियां बड़ी बड़ी 5-5, 7-7 लाख की, 8-8 लाख की इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं तो शहर में लाते हैं तो स्पीड आपने 20-30 रखी हुई है, शहर के अंदर रखी हुई थी मैक्सिमम 30 रखी हुई है, तो इन चीज़ों पर ये लोग बोलते नहीं है।
0: सब इन चीज़ों पर बोलते भी हैं और बात भी होती है। मैं आपको बात बताऊं कि हमारा बिगेस्ट जो लॉस थी ना कोपेनहेगन की, और जो हम इलेक्शन हारे थे, वो एक तो ये भी वजह थी मेरी अपनी, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी राय में बात ना करें, क्योंकि देखें जब आप कोपेनहेगन के अंदर जाते हैं ना, तो आपको कम से कम, आपको मेरे ख्याल से, मैं एक जगह गया था, दो जगह गया हम इलेक्शन के अंदर, हमको 45 मिनट 50 मिनट एक्स्ट्रा पहले जाना पड़ा था पार्किंग ढूंढने के लिए। और मैंने उस वक्त उस बंदे को कहा, मैंने कहा ये देख, यही मैं तुम्हें कह रहा था कि ये मसले हमें हल करने पड़ेंगे। दूसरी बात, मसला ये है कि जो हमारा मम्स है ना डेनमार्क में, वो बहुत ज्यादा, आप देखें मैं आपको एक छोटी सारी एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, बस एक एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कोपेनहेगन के अंदर कुछ दुकानें हैं, वो स्वीडन से चीजें लाते हैं और उनको इजाजत है और बेचते हैं। एब्सलोन में वही चीजें जर्मनी से ला रहे हैं। मैं एक छोटी सारी खाने पीने की है, 15-20 करोड़ का फर्क है। क्यों? क्योंकि स्वीडन के, जर्मनी के अंदर 13 और 14% मार्क्स है, स्वीडन के अंदर 6% मार्क्स है, डेनमार्क के अंदर अभी तक हम 25% मार्क्स पर खड़े हैं। हमें मार्क्स को नीचे करना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। 2028 से इनने कह दिया है कि होगा, मगर वो भी टू लेट है, क्योंकि जितनी देर तक हम मॉम्स को नीचे नहीं ना लेके आएंगे और आउटसीजन को नहीं नीचे लेके आएंगे, उतनी देर तक गाड़ियों की प्राइस भी नहीं नीचे जानी, किसी चीज की प्राइस भी नहीं जानी। डेनमार्क बाहिक मुल्क है पूरे यूरोप में जिसमें मॉम्स बहुत ज्यादा है चीजों पर, 25% बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने कोशिश की थी, एक ग्रुप था हमारी पार्टी में बड़े थे, कि हमने ये कहा था कि मॉम्स को नीचे लाया जाए, और उसके लिए हमने डजन ऑफ सॉल्यूशन दिए थे कि यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, यहाँ से पैसा निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। होपफुली हम करेंगे कि जब ये गवर्नमेंट बन जाएगी, इस बात पे देखा जाएगा कि इसको कैसे बेहतर किया जाए और कैसे, क्या कहते हैं, नीचे लाया जाए, क्योंकि मॉम्स ई एक प्रॉब्लम है डेनमार्क का, वो बहुत ज्यादा
1: मॉम्स जो है बहुत ज्यादा। ये इस पर सब बात करते हैं तो इसका हल भी बताए ना।
0: यार सब इसका हाल तो यही है ना कि फिर हमें किसी ना किसी तरह से वो जो पैसा है मॉम्स वाला, वो किसी ना किसी तरफ और से लाना पड़ेगा। उसका वही फिर आपका सवाल आ जाता है ना कि ये नेटो का भी बजट रखना है, ये भी बजट रखना है, ये भी चीजें रखनी है, ये भी चीजें रखनी है, ये भी चीजें रखनी है, वो फिर पूरा एक क्या कहते हैं जिस तरह कमीशन होता है ना, उसको बैठाना पड़ेगा। हाँ हम लोगों ने जो बात की थी वो ये की थी कि फिर आप कुछ कुछ प्रो होते हैं, राय से कुछ चीजें होती हैं उनको ज्यादा करते, वो फिर एक बंदा कहते कहते कहते इससे ये ना हो कि लोग ना करें। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो चीज तो देखी जाएगी फिर, मगर इसका एक कमीशन बनाना चाहिए जो सारी चीजों को गौर से देखे कि बंदा कैसे कर सकता है। अभी आप एक चीज देखें, डेनमार्क के अंदर एक और चीज बड़ी उली है, आपका डॉक्टर फ्री है, मगर आप छैनले के पास चले जाएं कितना एक्सपेंशन है उधर, और वो भी क्या कहते हैं एक चीज देखने की जरूरत है कि बंदा वो कैसे कर सकता है। तो ये एक पूरा क्या कहते हैं इस चीज को एक कमीशन बनाना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए।
1: ना ना, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, एक लेवल पर बात कर रहे हैं, तो हल जिस चीज का हल नहीं निकलेगा प्रॉब्लम तो इसी तरह रहेंगे। हर दफा इलेक्शन भी होते हैं, हर दफा हुकूमत भी बनती है, तो इसको जमहूरियत का हुसन भी कह सकते हैं। ये कैसी जमहूरियत है, कैसा हुसन है कि दो दो तीन तीन महीने हुकूमत नहीं बनती?
0: ऐसा हुकूमत दो दो तीन तीन महीने ही बनती है, ये बात करेक्ट है, मगर आप इसका ये देखें कि जब हुकूमत बनती है ना तो वो फिर एक पॉलिसी लेके आते हैं, उसको चलते हैं। इस बार जो हुकूमत बनी थी ना 2022 में, आप करीबन देखे ना तो इनके जो झंडा लेके आए थे वो इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा किया है। 2019 में इटमैन का गैंग थी, उनने भी अपनी पॉलिसी जो लाए थे और पूरी की थी। हाँ इस बार सूरत हाल ये है कि जिस तरह से क्या कहते हैं इलेक्शन का रिजल्ट है ना, उसने बहुत ज्यादा मुसीबत डाल दी हुई है, क्योंकि वो मसला यही जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक मोनली की वजह से ही हुकूमत नहीं बन रही, क्योंकि एक तरफ ये है कि बिजनेसमैन की साइड है और एक तरफ ये है कि जो सोशलिस्ट की साइड है, लास्ट लोई के बीच में खड़ा है, क्योंकि वो चाहता है कि एक लॉन्ग सेक्टर गवर्नमेंट बने जिसके अंदर एक मोनली है, बट उसके अंदर भी मसला ये है कि उसकी जो सबसे बड़ी डिमांड है ना वो यही है कि पेंशन को ज्यादा किया जाए, मगर वो इस बात को ये नहीं समझ रहा कि जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि हर बंदा का जॉब होती है ना, कुछ की होती है बड़ी फिजिकली जॉब और कुछ की होती है सान जॉब, जो 20 साल की उम्र में करेगा वो 65-66 तक उसको कम से कम पेंशन की जरूरत हो जाएगी, हो सकता है कि जो 10 वर्ष में काम करे 25 साल की उम्र में शुरू करे वो 70 साल तक रह सके, तो इसलिए ये जो टॉपिक है ना इसकी वजह से जो क्या कहते हैं बंदा कह सकते हैं। और दूसरा लेट इसलिए हुए थे कि 2006 में एक यही रिफॉर्म था जो बना हुआ था, वो हमारी पार्टी कह रही थी कि जितनी देर तक हुकूमत नहीं बन जाएगी और पार्लियामेंट नहीं बन जाएगी उतनी देर तक हम इसको दोबारा छिलछे नहीं करेंगे, वो भी मसला था, मगर वो मसले अब हल हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला अब इनकी नेगोशिएशन क्या कहते हैं आगे जा रही है और इंशाल्लाह ताला होपफुली जल्दी हुकूमत बन जाएगी। और दूसरी बात फर्स्ट में ही मुक गए जो मेरे ख्याल से एक फाइन तंग भी इसलिए
1: ना आखिर में आप क्या कहेंगे कि हमारे पास 2-3 मिनट हैं, इसका हल क्या होना चाहिए, हम लोग गैर मुल्कियों को अपनी आवाज किस तरह बुलंद करनी चाहिए, या तो जमहूरी तरीके से काम किए जाते हैं, या तो डिक्टेटरशिप नहीं है, या तो हड़ताल करके जो है वो दरवाजे खिड़कियां नहीं तोड़े जाते, पत्थर नहीं मारे जाते, बसों पर जो है वो डंडे नहीं बरसाए जाते, शीशे कार गाड़ियों के नहीं तोड़े जाते, या तो जो छोटा सा भी गलती करेगा वो एकदम कानून के अंदर आ जाएगा, तो गैर मुल्की अपने मुतालबात बनवाने के लिए, बात करने के लिए, उजागर करने के लिए क्या करें
0: भाई? यहाँ पे बड़े फोरम है, आप फोर्स दे सकते हैं, आप मीडिया में देख सकते हैं, आपके पास दर्जन अपॉर्चुनिटीज हैं और आप करना चाहें तो आसानी से बंदा कर सकते हैं, यहाँ पे हर दरवाजा खुला हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने 8-10 वॉल के बच्ची के मेंबर्स फेसबुक पे बड़ी जगह पर लिखा है, ये इसको मुस्की के खिलाफ मैंने उनके बारे में लिखा है, मैंने हेल्पिंग में जो हमारी सोशल की पार्टी है मैंने उनसे भी बात रहा की है कि हम लोग क्या आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज को वॉच ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी जगह पर भी ये मसले बने, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, बस हम अपना आवाज उठाना चाहें और हिम्मत करें तो हम बहुत कुछ कर सकते।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज। समय नाजरीन, ये थे अदनान अली अमीन जो अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे थे, तजिया कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। हमारा किसी के साथ मुतफिक होना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूस साबका में सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वह इन कानून मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े। तो उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लुत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखें ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमतुल नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, अबाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उन पे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पर आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पर अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, किसी की बस्तियों को उलट के फेंक दिया गया, कहीं हवा भेजी गई, लेकिन ये तक अजाब किसी पे नहीं भेजा गया कि ऊपर से एक छोटा सा परंदा उड़ता हुआ आए और एक छोटी सी कंकर डाल दे। और वो अगर ऐसे आगे हालत ऐसी पैदा कर दे कि फजालहुम का असफिम अकूल, ऐसे कि जैसे कोई घास खा खा के चबा चबा के जानवर फेंक देता है ना, इतनी बड़ी चीजें उस तरह हो जाए। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी बात पे गौर करें कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जमाना आया तो आसमानों पे पहरे शदीद हो गए। जिन्नात से काहिन कहें भी खबर ले आओ, खबरें ले आओ ताकि हम अपनी कौम को खबरें दें। वो कहें कैसे खबरें ले आए?

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इल्म है कि चंद दिनों से हम सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मन में कुछ बातें कह रहे हैं और सुन रहे हैं। सबसे पहले दरसे अव्वल में जज़ीरा अरब के हालात पे बात की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जज़ीरा अरब का क्या हाल था। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मुताबिक जो मुबशरात थे, जो इशारात थे, जो इरहासात थे, जो किनायात थे, जो मुअशरात थे, उन पर बहस की गई और उसको जिक्र किया गया दर्स में। और फिर तीसरे दर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत के वक्त के हालात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के वक्त के मोजज़ात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्मे मुहम्मद का तजवीज होना, ये जिक्र किया गया। और फिर हुजूर की रिजात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी हलीमा सादिया के पास तशरीफ ले जाना, जैसे अरब की आदत थी कि बच्चों को विलादत के बाद देहात में, जंगलों में, दूर अफदादा आबादियों में भेजा करते थे ताकि खालिस दिला मिले, खालिस लुगत मिले, उनकी लुगत भी फसी हो, उनकी सेहत भी बेहतर हो और शहर की आलूदगियों से बच जाएं और उनकी जबानों में भी किसी किस्म का खलल ना आए। इस बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बीबी हलीमा, जो कबीला बनू साद की मुर्जिया थी, दूध पिलाने वाली थी, वो उनके नसीब में